Kia ora ko te upurano kōrā Geet, Ben Boyu Shubakamana, Mohan Thapara, Satya Rukawa, Smara, Sami Hamir Sanga, Saad Basalai, a 28 minute baki rai kusā. Isi gari Shruta, tabi ko maza maap kami events arko bari ma mo jan kere ru raki rai kusū, ra isi gari ya bohuna kai rai kusā, yaha arko annual bed cartoon sab, you get together, boli ko din masi baglungi samaz UK lai chana gari rai kusā, Empire Banqueting Hall, Aldershot ma, यो 4th of July बोली Saturday होने सा दूसरों को समय 12 बजे देखी बेलुकी कार्य में सम्मान कुने कोई सर्मनी तब ले मिस्टर कुमार सिंह थापा वाले संपर्क करने वाला वासी वाइस चेयरमैन साथ ही इवेंट कोऑर्डिनेटर होने सा फोन नंबर एक सा 0757631946 वासी कॉल करे रखवाई जरूर बुझना सकने होने सा रेस को साथ मास्टर ताऊ ने सामी कार्यक्रम आगे

0: SBS Gorkha Radio.
1: BFB's Gorkha Radio कार्यक्रम में लामी चांसरता यो समय गुदली को आखिरी घंटा हमारा समय हमारे संगा 7 बजे का लगी 22 मिनट बाकी रहे कुछ सब विभिन्न जानकारी रह रहे का संस्रोता जिसमें अब ये जुलाई मंथ में अपनी इवेंट्स अरुसन मिडलैंड नेपाली मेला 2026 होने का रहे कुछ 27 जुलाई रा ये जी दूसरों को 12 बजे देखियो ने सा वैनी से मेलबोर्न पार्क नॉटिंगम आउ ने सा रा यहाँ से विभिन्न कार्यक्रम रहे कुछ सा जहाँ से या इवेंट्स रहे कुछ सा फ्री एंट्री हो ये से बाय द वे family friendly event ho nepali food and goods or culture and events music and entertainment or rako sa experience garna saknu huncha yo samay ma se celebration pani in the heart of Nottingham rako sa ra yesa anusar tapai le abo bishes gari hami ya midland se quite far away ko garle garda re ta haru airanu padyo sa london tira nepali mela haru so midland ko afle pani nepali mela yo bhayeko kram ma se gaire enjoy garna saknu hune cha ra aile lai pani aunus saba pani hami feri pani karyakram agadi parne nai so तपाईँको माझमार्को एउटा मिठो गीतको साथमा अहिलेलाई अगाडि बढाउने नै छु र रहेको छ झुमा लिम्बुको आवाजमा यी साइला एन्जोय गर्नुहोला यो मिठो गीत पनि